दर्शकों तो सारे ही सुने प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है तुहां सारिआं दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना दे ने से सुना दे ने माश्टी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। तो कार्यक्रम च फिर अहां अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत की तरफ ले चलदे ने।

सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला आशुतोष तुम्हारे सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि करने तुम्हारे सारे सुना देन अपना माटी दी महक कार्यक्रम तशोतों फिर यहाँ तुम्हें ले चल देन एक गीत संगीत दी तरफ तुम्हारी सुना कने नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म।

रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शो तो तुम सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम का जेड़ा सफर है सही संपन्न होता है तो तुम सारे अपनी रेडियो दोस्त शशि दे अनुमति सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: 91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।
1: हलचल होए, जरा शोर हो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री सुखू पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाएंगे, बजट भी देंगे। कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी तत्काल कम नहीं होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। हिमाचल के लिए डायरिया को हेपेटाइटिस ए बड़ी चुनौती। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हर पांचवा व्यक्ति यौन रोग प्रभावित। अग्निवीर योजना से घटे नौकरी के मौके, 800 कांस्टेबलों की होगी भर्ती। अब समाचार विस्तार से। जिला कांगड़ा के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों के धर्मशाला में रखे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आत्मनिर्भर पंचायतों के साथ साथ आत्मनिर्भर प्रदेश बनाए जाने की नींव रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायतों के विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की बड़ी घोषणा की, जिससे ग्रामीण जन प्रतिनिधियों में भारी उत्साह देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पेट्रोल डीजल व गैस की कीमतों में कमी आएगी। घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों पर कई चीजों का असर पड़ता है, जिसमें कम कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल को भारत तक पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष में संक्रामक रोगों के प्रकोप पर हुए शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन में सामने आया है कि प्रदेश में डायरिया और हेपेटाइटिस ए सबसे उभर कर जो है वो सामने आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियां, जल स्रोतों की स्थिति, मानसून और स्थानीय स्वास्थ्य ढांचा रोग प्रकोपों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अध्ययन में ये भी सामने आया है कि अधिकांश प्रकोप मानसून और मानसून के बाद के महीनों में हुआ। वर्षा के दौरान जल स्रोतों के दूषित होने तथा संक्रमण फैलाने की संभावना जो है वो अधिक रहती है। प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोग गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभर रहे हैं। चंबा के पांगी, भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किए गए अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इन क्षेत्रों में प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति बीते 1 वर्ष के दौरान किसी न किसी एसटीडी सिंड्रोम से प्रभावित रहा। रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि संक्रमण का प्रसार केवल स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि जागरूकता के अभाव, सामाजिक झिझक, असुरक्षित यौन व्यवहार और जांच को सीमित व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग में 800 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 247 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए प्रतिदिन कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वित्त वर्ष में 250 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 407 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। हिमाचल प्रदेश देश में वन अग्नि के सर्वाधिक घटनाओं वाला राज्य बन गया है। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच राज्य में सर्वाधिक 10,136 वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई। हर साल वनों की आग की घटनाएं हो रही हैं। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक जियोस्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है। ये मॉडल जंगलों में आग लगने की संभावनाओं का पहले से आकलन कर सकता है। प्रतिष्ठित शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये अध्ययन प्रकाशित हुआ। ये अध्ययन एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने किया है। इसमें नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही। यूक्रेन ने जंग शुरू होने के बाद से पहली बार रूस पर बड़े हमले किए। एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर हमला करने के बाद मॉस्को के हवाई अड्डो पर व्यावसायिक उड़ानें रोक दी गई। रूसी अफसरों ने भी पुष्टि की कि यह 4 वर्ष में हुए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था।
रूसी अफसर रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 555 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, इनमें से 200 को मास्को के पास पहुंचने पर रोका गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक सहायता राशि का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को पंचायत स्तर पर सत्यापन की लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने आवेदन सत्यापन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायतों के माध्यम से होने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार अब महिलाएं अपना आवेदन सीधे तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी, जहां दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुसार ये परीक्षाएं आगामी 3 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। 5वीं कक्षा की पुनः परीक्षाएं 3 जुलाई से 7 जुलाई तक संचालित की जाएंगी, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेंगी। श्री सोखो ने कहा कि स्वास्थ्य सुधारों को लेकर सरकार ने चिकित्सकों के साथ विस्तृत चर्चा की। आने वाले महीनों में वो स्वयं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा करेंगे और चिकित्सकों से संवाद कर स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार करेंगे। उनका कहना है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त स्टाफ और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर उन्हें एम्स नई दिल्ली के स्तर का बनाया जा रहा है। राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उनका ये भी कहना है कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ के क्षेत्रीय और जोनल अस्पतालों की सुविधाओं को भी उन्नत किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग उठाई है। महासंघ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आवश्यक कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की गई है। नीट की परीक्षा 21 जून को कांगड़ा जिला के 12 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि विशेष रूप से सक्षम परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा 6:20 तक समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी 11 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से अपील की कि समय से परीक्षा केंद्र पहुंच जाए, ताकि एंट्री गेट पर किसी तरह की भीड़ न लगे। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे तथा जैमर लगाना भी सुनिश्चित किया जाएगा और परीक्षा केंद्र के सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ समस्त परीक्षार्थियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तथा इसके उपरांत अपने घर लौटने के लिए HRTC की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता का कहना है कि ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभ्यर्थी अपनी नीट 2026 प्रवेश पत्र को पहचान पत्र, निवास स्थान तथा परीक्षा केंद्र के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।

0: मंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में दूसरों को खुश करने में अपना पूरा समय निकाल देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि सूर्य भी जब उगता है तो कुछ लोग उसकी रोशनी से आंखें बंद कर लेते हैं। आपका कर्तव्य सही मार्ग पर चलना है, सबको प्रसन्न करना नहीं। जो आपको समझेंगे वो आपके साथ रहेंगे, और जो आपको नहीं समझेंगे वो आपसे रिश्ता तोड़ेंगे या आपका साथ छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ एक नई शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं इस चिलचिलाती गर्मी की उमस के साथ। जी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सेहत का ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रखने की, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो, या फिर चाहे वो सर्दियों का मौसम हो। बीमारियाँ तो हर मौसम में दस्तक देती हैं, लेकिन हमारा क्या काम है? अपने आप को सतर्कता और सावधानी के साथ जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते रहना। जी दोस्तों, तो आप सभी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ इस समय जुड़ चुके हैं, और अब ढेर सारी बातें आप सभी तक पहुंचेंगी, ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचेंगी। तो क्या क्या खास आज के कार्यक्रम में रहने वाला है और क्या क्या बातें होने वाली हैं, ये सब जानने के लिए क्या करना होगा आपको? बस एक छोटा सा काम। क्या काम दोस्तों? जुड़े रहना होगा अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, और आइए बातचीत के साथ शुरुआत करते हैं मनोरंजन की भी, क्योंकि दोस्तों बातचीत कहीं ना कहीं वो भी अधूरी रह जाएगी अगर उसमें हम मनोरंजन का साथ ना दें, और कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है हमारे इन प्यारे प्यारे से गीत संगीत के बिना। तो आइए, देर किस बात की है, क्योंकि जिंदगी से जुड़ी बातें हैं और ढेर सारी बातें आप सभी तक पहुंचने वाली हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार और कह देना रहस्यमयी पिटार आप सभी के सामने ओपन। तो बिल्कुल आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, उसके बाद फिर से जुड़िए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। 91.2 MHz पर इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और आप सभी अपने दिन की शुरुआत को खास बना रहे हैं, यादगार बना रहे हैं, प्यारा बना रहे हैं। जी दोस्तों, शादियों का सीजन फिर से एक बार जो है शुरू हो चुका है और सभी मस्त हैं इस प्यारे से माहौल में, शादी की मस्ती में। जी दोस्तों, खैर अब वो समय तो नहीं रहा उस मस्ती भरे पलों का, लेकिन हाँ जो भी है अब ज़्यादातर जिसके घर में शादी है बस उन्हें ही ऐसा लगता है कि नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आस पड़ोस की हम बात करें तो बस फॉर्मेलिटी के तौर पे कि नहीं जाना है, दर्शन देने हैं और शगुन देना है, बस इतनी सी बात कहीं ना कहीं अब रह गई है अगर हम इन रीति रिवाजों की बात करें। जो पहले का समय महीनों शादियां चलती थी, अब तो एक ही दिन में बस सारी चीज़ें ख़त्म। सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों में, सारी चीज़ें, मतलब कोई वो एक ना शौक कह सकते हैं वो रहा नहीं है, वो इंजॉय कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। वो रिचुअल्स, हर एक रस्म, वो अभी हमें देखने को नहीं मिलती हैं। बस फटाफट से चीज़ें निपटाने का काम होता है, बस यही चल रहा है। खैर अपना अपना नज़रिया है, लेकिन इतना भी नहीं बदल जाना है कि आने वाली पीढ़ियों तक ये बातें सिर्फ एक किताबी ज्ञान की तरह रह जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, इसी के साथ लेकर चलते हैं आपको मौसम की अपडेट की ओर। तो आप सभी को बता दें कि इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो दो दिन यानी कि 20 और 21 जून को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से भारी बारिश होने का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। 10 जिलों में लाहौल स्पीति किन्नौर को छोड़कर बाकी जिलों में दो दिन तक हल्की से भारी वर्षा सहित आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी दोस्तों, वहीं 22 जून की हम बात करें तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 23-24 जून को भी मौसम खराब रहने की संभावना है, हालांकि इन दिनों कोई औपचारिक अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। खैर जैसे जैसे समय बीतता जाता है अपडेट जो है वो चेंज होती रहती है, तो हमें हर पल खुद को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसी के साथ हम भी कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और इंजॉय करते हैं एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

0: तो सुनो, 9:20 हो चुके हैं और हमारी बातचीत और जानकारी और साथ ही साथ मनोरंजन का सिलसिला ये इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन समय है समाचारों का। जी दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि ये बस खत्म होने को है, ये तो अभी लंबा सफर है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल आइए दोस्तों सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, उसके बाद फिर से जुड़िए रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ और साथ ही साथ ढेर सारी जानकारियों के साथ।
1: वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित, और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य को पाने में युवाओं का बड़ा योगदान होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
2: इस योजना के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूं, करीब 12 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। लक्ष्य यही है कि हमारा देश जो एक युवा देश है, और इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो और युवा हमारा स्वावलंबी बने, अपने लिए दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाब, उस दृष्टि से ये उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
1: इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है।
2: रोजगार को बढ़ाने के लिए कदम जो है किया गया, उसको हमने हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया है और लगभग कोई 5,500 कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश के लाभान्वित हुए हैं और कोई 5.5 करोड़ रुपए के करीब जो है इंसेंटिव के रूप में राशि जो है वितरित की गई है। तो बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा कदम है। ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में आए, सर्विस सेक्टर में आए, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, इनको मेडिकल कवर भी दिया जा रहा है और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने के आसार है।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई सड़कें दूर दराज के लोगों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती है और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि भारत की महान कलात्मक परंपराओं में कांगड़ा लघु चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है। वे कल शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कांगड़ा लघु चित्रकला शिविर में निर्मित कलाकृतियों की 5 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अमूल्य कलात्मक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, ज्ञान व परंपराओं के संरक्षण के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों की सराहना भी की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विधानसभा परिसर के समीप बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस फ्लाईओवर परियोजना के प्रगति कार्यों के निरीक्षण कार्यों के दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से यातायात की सुगमता होगी और संपर्क व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित। कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
3: भारत सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन युवाओं ने कादा स्थित ITBB बेस कैंप का भ्रमण किया, जहां उन्हें सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन, कर्तव्यों और चुनौतियों के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद युवाओं ने DFO स्पीति गोल्डी छाबड़ा के साथ संवाद कर क्षेत्र के जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध की मॉनेस्ट्री लालुंग गांव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में शामिल चिश्चम पुल का भी भ्रमण किया। 21 सदस्यीय ये युवा दल ग्यू, होल्डिंग, लालुंग और कादाखास सहित सीमावर्ती गाँव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को सीमा, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 22वीं बैठक कल शिमला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव के पंत ने की। बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंत ने कहा कि बैठक में जल की हिस्सेदारी, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, नीट अभ्यर्थियों को HRTC बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा, 20 से 22 जून तक एडमिट कार्ड दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। हिमाचल दस्तक के शब्द है, अब BBMB में हिस्सेदारी और एरियर के लिए लड़ेंगे CM सुक्खू। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमाचल के जंगलों में 22,600 करोड़ का खजाना, अर्थव्यवस्था के लिए बनेगा संजीवनी। पंजाब केसरी बतौर जयराम ठाकुर लिखता है, प्रदेश के हितों को बेच हितेशी बनने का कर रहे ढोंग मुख्यमंत्री। बघाट बैंक की BOD को सरकार ने किया सस्पेंड, 30 दिन में मांगा जवाब शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, PM विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार नियम के तहत 2183 सड़कों को वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और इस प्यारे से सफर को आप सभी सुनते हैं दोस्तों 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। ऐसे तो मनोरंजन पूरा दिन आप सभी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां, कुछ खास कार्यक्रमों के माध्यम से ही आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। तो बिल्कुल उन्हीं खास कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम जिसके साथ होती है आप सभी के दिन की शुरुआत खुशनुमा और यादों से भरी हुई। दोस्तों एक सवाल आप सभी से करना चाहूंगी, खास करके महिलाओं से, लड़कियों से, छोटी बच्चियों से, तो खैर अभी उनमें इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सवाल उनको खुद से भी करना चाहिए कि एक बुद्धिमान स्त्री हम किसे कहते हैं, बुद्धिमान स्त्री कौन होती है, उनमें ऐसी कौन सी सोच या समझ होती है जिससे कि वो एक बुद्धिमान कहलाती हैं। दोस्तों देखा जाए तो एक लड़की को, एक महिला को बचपन से लेकर जब तक वो इस दुनिया में है तब तक संघर्षों की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। स्टेप बाय स्टेप उतार चढ़ाव बहुत सारे उनकी जिंदगी में आते हैं, कुछ कठिनाइयां, कुछ अपनों का दर्द, तो कुछ खुद से लड़ाई। कई बार हम, मैंने शुरुआत में बात कही दोस्तों कि दूसरों को खुश रखते रखते हम अपनी खुशी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो ये बात वाकई में सच है या झूठ है कि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये सवाल खुद से कीजिए कि क्या आज तक हम खुद के लिए जिए हैं, खुद की खुशी को कभी समझ पाए हैं, या सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशी, परिवार के लिए जो भी किया वो सब चीजें मायने रखती हैं। लेकिन बुद्धिमान एक महिला वो होती है जो अपने मन की गहराइयों को समझती है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना जानती है। वो हर रिश्ते को सम्मान देती है लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। हर रिश्ते को कैसे सहेजना है, कैसे रखना है वो बखूबी जानती है, लेकिन साथ ही साथ अपने स्वाभिमान को भी वो कभी ठेस ना पहुंचाएं, उन्हें हम बुद्धिमान कहते हैं। उसे पता होता है कि झुकना और टूटना दोनों अलग बातें हैं। वो प्रेम में झुक सकती है पर अपमान में कभी टूटती नहीं। वो समय की तरह चलना जानती है, न किसी के लिए रुकती है, न किसी को पीछे छोड़ने की होड़ करती है। बुद्धिमान महिला वही है जो अपने कर्मों का जो है वो अपना परिचय बनाती है और अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान। दोस्तों उसकी आंखों में भी सपने होते हैं, बचपन से शुरू होते हैं, और इस जिंदगी के सफर में जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, एक दूसरे को देख के या यूं कहें कि मन ही मन उनके भी कोई ख्वाब होते हैं,

दिल में दया होती है और विचारों में परिपक्वता होती है। वो दूसरों के जीवन में उजाला जरूर फैलाती हैं, क्योंकि उनके भीतर स्वयं एक दीप जल रहा होता है और ये दीपक उनकी शक्ति होती है। ये उसकी सुंदरता है और यही उसकी असली बुद्धिमानी है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो छोटी बच्चियां हैं, जिंदगी में किसी को खुश रखना बुरी बात नहीं है, किसी को किसी की खुशी के लिए कुछ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर किसी को खुश करना ये कहीं ना कहीं शायद गलत हो सकता है। अपनी खुशियों का गला घोंटकर हम जिंदगी में खुश रहना ही भूल जाते हैं, लेकिन हम ये बात भी भूल जाते हैं कि हम जिनके लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं, असल में वही उस बात को नहीं समझ रहे होते हैं। वही आपको कदम कदम पे दुख पहुंचाते हैं, वही आपको कदम कदम पे तोड़ते हैं और आप टूट जाते हैं, क्योंकि आप अपनों की खुशी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपनों के लिए ही जिंदगी को जी रहे हैं। तो कभी खुद की आवाज को सुनिए, खुद की खुशियों को चुनिए। अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आज के समय में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है। जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है वो ना आगे जाने की होड़ में रह पाते हैं, ना पीछे आने की, वो एक बीच मंझर में फंस कर रह जाती हैं। तो आज के समय में समय निकालना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिंदगी को अगर प्यारा बनाना है, खुशनुमा बनाना है, तो कुछ खास बातें जो कि खुद से जुड़ी हुई, खुद की वैल्यू से जुड़ी हुई, खुद की अहमियत से जुड़ी हुई, वो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। तो जरूर आप सभी इन बातों पे विचार कीजिए, गौर कीजिए और सोच कर देखिए कि आखिर हम किस राह की ओर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और कभी भी अपने साथ अन्याय मत होने दीजिए, फिर चाहे वो कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत 91.2 MHz पर आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त चिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो प्यारी प्यारी सी बातें और प्यारे प्यारे से गीत जो है आप सभी तक पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ आइए इस सफर को बढ़ाते हैं आगे और ज्यादा इसको रोमांचक और ज्यादा इसे प्यारा बनाते हैं जानकारियों के साथ। तो आइए जानकारियों का सिलसिला भी शुरू करते हैं, लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लगभग 311 पद जो हैं वो रिक्त हैं, जिनमें से 174 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भर्ती के अंतर्गत शिक्षा विभाग में 41 पद, पशुपालन विभाग में 13 पद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 4 पद तथा शेष पद अन्य विभागों में शामिल हैं। स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, और बैठक में दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जी दोस्तों, अक्सर हम सभी के राइट्स की बात करते हैं, सभी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और आप ये एक बात भूल जाते हैं कि वो जो लोग होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनके माइंड इतने शार्प होते हैं ना दोस्तों, कि शायद उतना हम भी ना सोच पाएं, उससे फटाफट से वो एक चीज़ का आंसर जो है आप सभी तक पहुंचा सकते हैं, या उनमें ऐसी क्रिएटिविटी होती है, ऐसा टैलेंट होता है ना कि वाकई में ऐसा लगता है कि किसी और में नहीं है। बस थोड़ा सा उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा उनके इमोशंस को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं वो अपनी कमज़ोरी को लेकर खुद को जो है ना वो वीक फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप उन्हें मौका दें, आप उनका साथ दें, तो वो एक अपनी पहचान जो है वो ज़रूर बना सकते हैं। दोस्तों, एक कमी की वजह से हम अपनी पूरी ज़िंदगी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये बात हमेशा याद रखिए कि ये जो हम कई बार इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, तो दिव्यांगता बचपन से, कुछ लोगों को तो खैर बचपन से ही उनके साथ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बचपन से सही हैं तो आगे हमारे साथ कुछ ना हो। क्या पता आने वाले पल में क्या हो जाए और क्या ना हो जाए, तो कभी भी इस घमंड के साथ ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी का मजाक ना बनाएं, और उनके टैलेंट की कद्र करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम ज़िंदगी में एक बोझ बनकर रह चुके हैं। क्योंकि जब हम लोग उनके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से भेदभाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद की नज़रों में ही खुद को कम समझने लग जाते हैं, तो हम तो इसमें एक गलत का भागीदार बन गए। तो गलत कभी मत कीजिए, सच्चाई और अच्छाई की राह पर ज़िंदगी में आगे बढ़िए, इससे बढ़कर ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना है, और आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

सच्चे दोस्तों, जीवन के दिन वाकई में बहुत ही छोटे हैं। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होना है और क्या नहीं होना है। इसीलिए कहते हैं कि हर पल को खुले दिल से एंजॉय कीजिए, बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी गम के, बिना किसी परेशानी के। दोस्तों, परेशानियां हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ रहती, लेकिन वो तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, आती जाती रहती हैं। तो इन्हें आने जाने दीजिए और आप जो है अपनी ज़िंदगी में कर्मों के साथ, सही कर्मों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है? क्या समय की है? बिल्कुल नहीं। क्या पैसों की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, जिंदगी में असली समस्या जो है, और वो सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो है ऊर्जा की कमी। वही ऊर्जा जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है, वही ऊर्जा जो आपको अपने सपनों के पीछे लगातार भागते रहने की ताकत देती है, वही ऊर्जा जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके अंदर हर समय भरपूर ऊर्जा हो, अगर आपका शरीर और आपका दिमाग हमेशा एक्टिव, फोकस्ड और पॉजिटिव बना रहे, तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? आप जो भी करना चाहेंगे उसे पूरी ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएं। आपके अंदर आलस के लिए कोई जगह नहीं बचेगी और आप हर दिन अपने सपनों के और भी करीब पहुंचते जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज ज्यादातर लोग थके हुए हैं, वो मानसिक रूप से उलझे हुए हैं और अपने अंदर छिपी हुई असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। क्या आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों? सोचिए, तब तक एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा, मीठा सा, खूबसूरत सा गीत।

0: चल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी।
1: तो सो 91.2 मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। दोस्तों, हम अपने आसपास, खैर बहुत दूर की बात नहीं करते हैं, मतलब बाहर दुनियादारी की बातें तो खैर हम जानते हैं किसी न किसी माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से भी आप जानते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास असल में जो चीजें हैं, हम कहने को तो जिंदगी से जुड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर उन पे नजर ना दौड़ाई जाए तो फिर किस बात की रियलिटी, ये किस बात के लिए हम इस समाज में रह रहे हैं, इस मतलब कि इन लोगों के साथ रह रहे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो हम लोग होते हैं ना, हमें किसी से खैर कोई लेना देना तो होता नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी साथ चल पड़ते हैं, है ना। स्पेसिफिकली तो मैं नहीं कहूँगी, और जस्ट आप समझ जाइए, है ना, बातों के लिए कहते हैं ना, जिंदगी से जुड़ी बातें होती हैं, बस एक समझने वाली बात है, एक जागरूकता वाली बात है और एक सतर्कता वाली बात है कि पर्सनली अगर हम समाज के लोगों की बात करें, गांव में जो भी हम लोग रहते हैं, अगर हम अपनी ही जिंदगी से जुड़ी बात करें, कुछ समय के लिए हम किसी को देख के या किसी के विरोध में जब आगे बढ़ते हैं कि हाँ उनकी बातें हमें पसंद नहीं है, और हम इतना जोश की नहीं भाई, आज तो कुछ ना कुछ हम कर ही देंगे, है ना। लेकिन एक बात सोचिए कि इस एक हरकत की वजह से हम अपनी जिंदगी पे कितना बड़ा दाग लगा लेते हैं, कितनी बड़ी एक कहते हैं ना कि हमेशा के लिए हम उन लोगों की नजरों में जो है एक बुरे इंसान बन जाते हैं, अपनी ही इमेज हम गिरा रहे होते हैं सबके सामने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं क्योंकि हम एक पावरफुल लोगों के साथ जुड़े हैं, हम पावरफुल लोगों के पीछे चल रहे हैं, और बस उनकी एक बात और हम में वो उत्साह इतना ज़्यादा कि पूछिए मत, भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई लाइफ है, हमारी अपने भी समाज के लोग हैं, और अगर न जाने कल हम भी उन्हीं लोगों में जो है इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि कुछ समय की ये होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि काबिलियत जो हमें मिली होती है उसके लिए हम पूरी जिंदगी को ताप पे लगा देते हैं। किसी को बुरा भला कहने से पहले हम एक बार नहीं सोचते, इस तरह से हम, और आजकल तो आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से किस किस तक जो है हमारी वो एक बात नहीं पहुंचती है। हम एक जगह बोलते हैं, पहले होता था कि जहां हम वो जो बातें विरोध कर रहे हैं वो तब वहीं के वहीं रह जाता था क्योंकि लोग उसे फैला नहीं पाते थे। कोई बात नहीं, किसी ने नहीं देखा, वहां के लोगों ने देखा, आपके दोस्तों ने देखा, बात खत्म। लेकिन आज के समय में जो वीडियोस और वायरल हो रही है ना सोशल मीडिया पे, तो वो एक बच्चे से बच्चे तक पहुंच रही है, और हम किस तरह से क्या मैसेज दे रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को कि हम बच्चों को बोलते हैं कि पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन पेशेंस तो हम बड़ों में भी नहीं है शायद। खास करके महिलाओं की मैं बात करूं, बस किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी पे वो खड़े हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, और आने वाले पलों में ना जाने वो फिर कहाँ के कहाँ होंगे, कोई नहीं जानता। तो इसलिए सबसे पहले खुद को देखिए और खुद की एक वो प्लानिंग कीजिए, किसी के चलने पे अपनी जिंदगी को मत चलाइए कि हाँ किसी ने बोल दिया ये कीजिए तो आप करना शुरू हो गए। खैर, सोच समझ आपकी अपनी अपनी है, आपकी जिंदगी है, आपको पता है बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि ये समय है, और समय जो है हो सकता है आज आपके हाथों में है, कल किसी और के हाथों में हो, फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये जो दुश्मनियाँ होती हैं, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए हमें, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और तभी जो है वो समाज भी विकसित हो सकता है और हमारा देश भी विकसित हो सकता है। लेकिन जब तक हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तो शायद हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए दूसरों की चुप्पी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, बातें यहाँ की वहाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी सोच समझ यहीं से प्रदर्शित होती है, यहीं से पता चलता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं और आप में कितनी काबिलियत है हर चीज़ को हैंडल करने की। और ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने आपका साथ दिया है उन्हें भी पछतावा हो रहा हो कि किसका ही साथ दे दिया। तो इस ऐसे इंसान कभी मत बनिए जी दोस्तों। तो फिलहाल आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा, खूबसूरत सा, मीठा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ आप सभी अपनी डेली रूटीन के साथ आज यानी कि 20 जून 2026 के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, या यूं कहें कि दिन को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन भी खास है। आज के दिन भी इतिहास में कुछ बातें आप सभी तक पहुंचाने वाली हैं। जी दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटना अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ज़रूरी अहमियतों में से एक है। तो उन पन्नों को पलटिए, अपनी किताब को जानिए कि क्या है आज के दिन की खास बात। वैसे तो जिंदगी में हर पल खास होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक खास नहीं बनाएंगे तब तक कैसे उसे एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि एंजॉय नहीं किया तो क्या किया, कुछ भी नहीं। जी दोस्तों, तो जब तक आप ये सोचते हैं कि आज का दिन क्यों खास है और उस इतिहास के पन्ने को आप पलट कर आज के दिन में जाते हैं 20 जून के दिन में, तब तक मैं लेकर चलती हूँ आपको कुछ और खास बातों की। और कुछ अपने आप में जो एक एक्टिवनेस है वो कैसे आएगी, ये आलस, और गर्मियों के मौसम में तो आलस भाई कितना ही बढ़ जाता है ना, सच में दोस्तों परेशान हो जाते हैं सारे के सारे। लेकिन क्या करें, मौसम मौसम के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस आते ही हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, या अक्सर आप सभी ने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा जो कभी थकते ही नहीं है, पूरा दिन काम करते रहेंगे लेकिन इतना काम करने के बाद भी थकान का उनमें एक कतरा तक नहीं होता। उनके अंदर हमेशा जोश, फोकस और पॉजिटिविटी बनी रहती है। जबकि कुछ लोग थोड़ा सा ही काम करते हैं और थक जाते हैं, उनका ध्यान जल्दी भटक जाता है और वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास ज़्यादा समय होता है, या फिर उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? नहीं, असल में अंतर केवल एक चीज़ का होता है, और वो अंतर होता है एनर्जी का, ऊर्जा का। जी दोस्तों, कोई खास टैलेंट नहीं होता, कोई खास चीज़ नहीं होती, बस ऊर्जा का डिफरेंस जो है वो हम में और उनमें आ जाता है। और ये अंतर केवल एक चीज का जो है वो आप सभी तक पहुंचता है। और इस दुनिया में सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके पास मौजूद ऊर्जा के स्तर का होता है। क्योंकि आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, कितना भी शानदार प्लान हो, अगर आपके अंदर काम करने की ऊर्जा नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जी दोस्तों, बड़े बड़े सपने देख लेना और बस ये सोचते रहना, तो क्या वो सपने पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें करने के लिए मेहनत लगती है, वो एनर्जी लगती है जो कि कहीं ना कहीं हमें दिखती नहीं है या हमारे सामने आती नहीं है। तो उसी एनर्जी को कैसे लेकर आना है, बस यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस आलस को कैसे अपनी जिंदगी से दूर भगाना है। खास करके लंच के बाद तो ऐसा मन करता है ना कि बस कोई सुला दे, बस सोए रहें। बस इसी तरह की रूटीन जो है सबके साथ होती है, घर की बात हो चाहे ऑफिस वर्क की बात हो, कहीं की भी हम बात करें। इतना आलस आ जाता है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता। लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ता है और करते भी हैं, लेकिन उस आलस के साथ ही बिना मन के साथ बस यही सब चलता रहता है हम सभी के जिंदगी में। खैर दोस्तों, ये तो जिंदगी से जुड़ी बहुत ही खास खास सी बातें, लेकिन साथ ही जरूरत है हमें बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत संगीत की। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

तो सो इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत के सफर को और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से जानकारियों की ओर। दोस्तों, मानसून सीजन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश आशीष कोहली द्वारा सभी जिला उपनिदेशकों को भेजे गए आदेशों में कहा गया है कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव के लिए स्कूलों में आवश्यक एहतियाती उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। जारी निर्देशों के अनुसार बाढ़ संभावित, भूस्खलन प्रभावित तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी स्कूलों के को भवनों, चारदीवारी, छतों, जल निकासी व्यवस्था तथा अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली किसी भी कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए कहा गया है ताकि विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा पर कोई खतरा ना रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानसून शुरू होने से पहले सभी आवश्यक निवारक उपाय पूरे कर लिए जाएं और स्कूलों को सुचारू संचालन में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों, क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून की ओर हम बढ़ रहे हैं और मानसून कभी भी दस्तक दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केरल में मानसून दस्तक दे चुका है, तो धीरे धीरे यहाँ भी पहुंचने ही वाले होंगे। तो ऐसे में जो है फिर थोड़ा सा हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत हो जाती है, कहीं बाढ़ तो कहीं क्या, तो कहीं क्या, किस तरह से। तो ऐसे में गर्मी का मौसम है और हमें कहीं बाहर घूमने जाना भी है, तो थोड़ा सा हमें पहले से ही केयरफुली या तो घर पर बता के निकलें या तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लें, क्योंकि नदियों नालों में पानी का बहाव एकदम से कब बढ़ जाए वो पता नहीं चलता है। तो ऐसे में हमें अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी नहीं डालना है। जी दोस्तों, आपके साथ और भी बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, तो खुद को ठेस पहुंचाने के साथ साथ कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं जाने अनजाने में। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और खूब अपना भी ध्यान रखिए। तो फिलहाल दोस्तों, आईएसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों एक समय था कि जब टीचर की डांट में भी प्यार होता था, उस डांट में छिपा होता था हमारा भविष्य। माँ बाप भी कहते थे, अगर गलती करे तो अच्छे से समझाना, जरूरत पड़े तो डांटना भी। लेकिन आज अगर एक टीचर किसी बच्चे को हल्का सा भी डांट दे तो अगले दिन शिकायत, बहस और सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या सच में टीचर गलत हो गया है या सोच बदल गई है? दोस्तों टीचर कोई दुश्मन नहीं होता, वो भी इंसान है, उसके भी इमोशंस होते हैं। तो हर दिन 30 से 40 बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि उन्हें इंसान बनना सिखाता है। जब बच्चा गलती करता है, जब वो गलत रास्ते पर जाता है तो टीचर का भी दिल दुखता है। और उस वक्त जो डांट निकलती है वो गुस्से से नहीं, चिंता से निकलती है। आज पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ कहना मत, लेकिन

रहा है। हम भूल रहे हैं कि वही टीचर जो कभी हमें डांटता था, आज उसी की वजह से हम सही रास्ते पर हैं। डांट बुरी नहीं होती, गलत इरादा बुरा होता है। तो हमेशा टीचर्स की जो है रिस्पेक्ट कीजिए, तभी समाज का भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सकता है। जी दोस्तों, कम शब्दों में बहुत गहरी सी बात ये आप सभी तक पहुंची है, और उम्मीद है कि इस एक एक शब्द की गहराई को आप समझेंगे और इस पे सोच विचार जरूर करेंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों 91.5 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से रुख करते हैं अपनी बातचीत का जानकारियों की ओर। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में

लगातार हो रही मनमानी और बिना ओटीपी डिलीवरी की शिकायतों पर कांगड़ा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने धर्मशाला स्थित इंडियन गैस के एक निजी एजेंसी की बुकिंग और सप्लाई पर जो है वो तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए जनहित में इसकी पूरी कमान अब पालमपुर की एक गैस एजेंसी को सौंप दी है। नए आदेशों के तहत शुक्रवार से ही पालमपुर की एजेंसी ने धर्मशाला क्षेत्र में गैस की सुचारू आपूर्ति शुरू कर दी है, जिससे पिछले कई दिनों से सिलेंडर के लिए परेशान चल रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। जी दोस्तों, खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार धर्मशाला की इस गैस एजेंसी के खिलाफ लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी और विभाग ने इस मामले में कई बार एजेंसी प्रबंधन को चेतावनी दी और कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश भी दिए, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायतों का सिलसिला नहीं थमा। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे मिडल ईस्ट संकट के मद्देनजर विभाग पहले से ही गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर पैनी नजर रखे हुए है और इसी दौरान जो है ये कदम उठाया गया। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला 91.2 MHz से। दोस्तों आपकी जिंदगी की गुणवत्ता, आपकी सोच, आपके फैसले और आपके परिणाम सब कुछ आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऊर्जा आती कहां से है? क्या ये केवल खाना खाने से आती है, ये पानी पीने से आती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आराम करने से मिलती है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई जो है वो छिपी हुई है? तो सोचकर देखिए आपको क्या लगता है, खाना खाने से आती होगी, कुछ लोगों को लगता भी होगा, पानी पीने से आती होगी, इसमें भी कुछ लोगों को लगता होगा, या फिर कोई और रहस्य इसके पीछे छुपा हुआ है? तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और सोच कर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम में वो एनर्जी आ जाती है, वो ऊर्जा आ जाती है, जिससे कि पूरा दिन बहुत बेहतर जाता है। तो जी दोस्तों इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, यानी कि सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोचने तक लेते हैं फिर से एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक और बेल आइकन को दबाओ।
1: लाल छड़ी मैं

तो सो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से सफर में इस समय दिन की शुरुआत के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं जी दोस्तों। और बागनी की हम बात करें तो आज कट भी है बिजली का, तो थोड़ा आज मतलब गर्मी जो है फेस करनी पड़ेगी लोगों को, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोऑपरेट करने की ज़रूरत है हम सभी लोगों को जी दोस्तों। जिस तरह से हम एसी या फैन या कूलर की हवा में रहते हैं, आज थोड़ा सा धूप के साथ रह लीजिए, क्योंकि काम भी हमारी ही सहूलियत के लिए होते हैं, तो इसमें हमें सहयोग ज़रूर करना चाहिए जी दोस्तों। तो एक सवाल था ना इस गीत पे जाने से पहले कि ये जो ऊर्जा है जिससे हम अपने पूरे दिन को एनर्जेटिक बनाते हैं बिना थकान बिना आलस के, तो वो किस तरह से बनाते हैं? क्या खाने से बनाते हैं, या पानी पीने से बनाते हैं, या फिर आराम करने से बनाते हैं? तो कैसे ये ऊर्जा हमें आती है दोस्तों? ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं होती, ये तीन अलग अलग स्तरों पर काम करती है, आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी भावनाएं। अगर इन तीनों का संतुलन सही है तभी आप असली जो है वो मान लीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन आपका मन नकारात्मक सोच से भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपका मन सकारात्मक है लेकिन आपका शरीर कमजोर है, तब भी आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को हर स्तर पर समझें और उसे मजबूत बनाएं। दोस्तों ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च कर देते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होते रहते हैं, बेवजह चिंता करते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं। परिणाम क्या होता है? उनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जाती है और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता कि वो खुद अपनी ताकत को नष्ट कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में केवल और केवल सकारात्मक और प्रोडक्टिव विचार डालें, अगर आप अपने शरीर का सही ख्याल रखें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आपकी ऊर्जा कितनी अधिक बढ़ सकती है? यही तो है मूल मंत्र जी दोस्तों। आपको अपनी ऊर्जा को समझना है, उसे बचाना है और सही दिशा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगेगी तभी आपकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव जो है वो आ पाएंगे या आना शुरू हो जाएंगे जी दोस्तों। तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के लिए समय भी चाहिए, और वो समय कैसे आएगा? जब आप अपने आप को समय देंगे। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही ये प्यारा सा और मीठा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। बहुत ही प्यारे से इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ। दोस्तों एक दिन एक संत एक गांव से गुजर रहे थे और एक परिवार ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया। संत ने घर में देखा सब लोग बहुत ही शांत, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई बहस नहीं, सभी एक दूसरे की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। संत ने घर के मुखिया से पूछा कि आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता? मुखिया मुस्कुराए और बोले, होता है लेकिन हम चुप रहना सीख गए हैं। संत को बहुत आश्चर्य हुआ। रात को संत ने सपने में भगवान से पूछा कि ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा जहाँ सब चुप रहकर रिश्ते बचाते हैं। भगवान ने कहा, जहाँ लोग सही और गलत से ज्यादा रिश्तों की कीमत को समझते हैं वहीं शांति रहती है। जी दोस्तों, तो रिश्तों की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की बातों के साथ, जानकारियों के साथ और बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ। तो अब समय हो गया है फाइनली आप सभी से अलविदा लेने का। दोस्तों बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चलता, मन तो नहीं करता लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

अनुदशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आप सभी जानते हैं कि आज बागनी क्षेत्र में जो है बिजली बाधित रहेगी, तो उस वजह से रेडियो को अभी हम फिलहाल के लिए बंद कर रहे हैं। आप फिर से जो है 5 बजे या जैसे भी लाइट आती है तो आप अपनी इस मनोरंजन को कंटिन्यू कर सकते हैं 5 या शाम 6 बजे के बाद, जैसे भी रहता है। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए रेडियो को आज रेस्ट पे भेज देते हैं, और आप सभी भी रेस्ट फरमाइए, आराम फरमाइए। धन्यवाद।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

गुड इवनिंग धर्मशाला। जी हाँ, सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने इस कार्यक्रम में जो शुरू हो गया है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। अब से लेकर के छह बजे से लेकर के 8 बजे तक हम रहते हैं आपके साथ इस संध्याकालीन सभा में। और आज की सभा में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, आज जून महीने की 20 तारीख हो गई है और दिन है शुक्रवार का, नहीं सॉरी, दिन शनिवार का है, यानी कि एक बार फिर से आ गया है वीकेंड। और कल आप करेंगे आराम, पहुंच गए ना आप लोग सही सलामत अपने अपने घरों पर, और नहीं पहुंचे हैं तो ज़रूर रास्ते में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे ये कार्यक्रम। जैसा कि हमें पता चला है कि कई लोग ये कहते हैं कि मॉर्निंग में तो शायद उन्हें इतना समय नहीं लगता है, लेकिन हाँ जब शाम के वक्त वो घरों को जाते हैं तो गाड़ी में उन्होंने मध्यम मध्यम सा संगीत लगाया होता है और साथ में रेडियो गुंजन धर्मशाला को वो सुन रहे होते हैं। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि फेसबुक पेज से भी हम लाइव हैं। इस वक्त हम रेडियो गुंजन धर्मशाला के पेज से लाइव हैं और आपके साथ लाइव, वैसे भी कार्यक्रम भी लाइव है और पेज से भी हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं। तो जब आप हमें देश विदेश तक सुन पाते थे तो अब देश विदेश तक देख भी पाएंगे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से।

और हमें लगता है कि अब मौसम की जो बात है वो बाद में कर लेनी चाहिए, अभी फिलहाल आपको एक गीत सुनवा देना चाहिए। क्यों, क्या कहना है आपका? सुन लेते हैं एक गीत, उसके बाद करेंगे और बातचीत। कार्यक्रम में हमारे पास पिटारे में बहुत कुछ है आज भी हमेशा की तरह, लेकिन आज थोड़ी सी हमारी तबीयत भी नासाज है, तो इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से आपसे बातचीत होगी और हम बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे।

जी तभी आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। अशुतम 20 जून का इस समय का जो तापमान है बाहर वो हम आपको बता देते हैं, 29 डिग्री सेल्सियस इस समय दिखा रहे हैं गूगल बाबा, और हवा में नमी बनी हुई है 50%। वैसे आज हम यहाँ से थोड़ी दूर कांगड़ा तक गए थे और वहाँ पर तो जो मौसम था वो गर्मी वाला ही था, इतनी ज़्यादा धूप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि शायद धर्मशाला की तरफ भी मौसम जो है वो वैसा ही होगा। तो कैसा था यहाँ पर ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त ऐसा ही शुष्क सा जो मौसम है वो बना हुआ है। रात होते होते तक क्या दिखाएगा ये नहीं पता है, क्योंकि देखिए ना आधी रात को भी बारिश हो जाती है, कभी 1 बजे तो कभी 2 बजे तो कभी 3 बजे रात को, नहीं पता लगता यहाँ के मौसम का। बस हमें जो सावधानियां बरतनी होती हैं वो ये बरतनी होती हैं कि घर के आसपास अगर हम खुले में कोई चीज़ें रखते हैं तो उन्हें सबको संभाल के सहेज करके अपनी जगह पर रख दें, ताकि अगर अचानक से रात को बारिश हो जाए तो वो ऐसे गीली ना हो, आपके दिन भर के कार्यों पर जो है वो पानी ना फिर जाए। बस इतना सा ध्यान ज़रूर रखिएगा।

चलिए, दिल का गीत सुना था ना हमने पहला गीत, और ये दूसरा गीत भी आ रहा है दिल से ही संबंधित। मुकेश की आवाज़ में है ये गीत।

इशारा फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, आ गया है वो दिन जिसका था हम सबको कब से इंतजार। जी हाँ, वो दिन नहीं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि वो दिन जब आपके बच्चों की नीट की परीक्षा होनी है कल। कांगड़ा जिला में 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा के सुचारू और पारदर्शी आयोजन के लिए जिला में 12 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियां समय पर सुनिश्चित करें। बैठक में केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला कैंट के प्रधानाचार्य एवं NTA के सिटी कोऑर्डिनेटर सुनील चौहान ने परीक्षा के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। और इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरे और जैमर लगाए जाएंगे तथा परीक्षा प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की निगरानी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था

मद्देनजर सभी केंद्रों पर पुलिस बल के साथ साथ आईटीबीपी के जवान भी तैनात रहेंगे। अब परीक्षा केंद्रों के बारे में भी आपको बता देते हैं कि क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां ग्राउंड फ्लोर तथा प्रथम तल राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला ओल्ड ब्लॉक और आर्ट्स ब्लॉक में और राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा में होगी। पीएम श्री केंद्र विद्यालय पालमपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज एंड गर्ल्स धर्मशाला में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान धर्मशाला में और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पालमपुर तथा केंद्रीय विद्यालय भनाला भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारे केंद्र हैं परीक्षा के। तो नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, तो अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर आपको बसेस में जाना है तो भी, और अगर आपको अपनी व्हीकल में जाना है तो भी समय पर परीक्षा केंद्र पहुँच जाइएगा। और सभी उन परीक्षार्थियों को जो भी परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं या दे रहे हैं और जो काफ़ी मायूस भी हुए थे पिछली बार कि अब हमें दोबारा देनी पड़ेगी, उन सभी को हम यहाँ से शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। कि आपकी परीक्षा अच्छे से हो और आप अपनी अपनी मंजिलों की तरफ सफल बढ़ जाएं। और साथ ही में आगे आने वाले दिनों में फिर आप भी ये गीत गा सकते हैं।

सुरेश वाडेकर और अनवर को भी आपने सुना फिल्म विधाता में। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

तो विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार के कहने के मुताबिक विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव और जरूरी मरम्मत के कारण 11 केवी योल फीडर के अंतर्गत गांव सिद्धबाड़ी, गायतो मोनेस्ट्री, योल बाजार, बन्नी, बनोरड़ू, चतरेड़, सेठ गोदाम, थेरू, खलुई बारग, नरवाना, जलोह, तंगरोटी, रक्कड़, उथड़ाग्रां आदि में 22 जून को सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी पूरी तरह से। मौसम खराब होने या फिर अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में ये कार्य स्थगित या फिर आंशिक रूप से भी किया जा सकता है।

श्रोताओं, बस यूं ही बने रहिएगा आप हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, धर्मशाला से गूंज अपने पन की। और एक बिल्कुल ही छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं हम।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक गीत भेज रहे हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी का गाया।
6: अगर मिले
5: फिल्म का नाम है अनोखी अदा।

अनोखी अदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और सुन रहे थे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के अंतर्गत। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

जानकारियों के सेक्शन में एक बार एक और जानकारी है हमारे पास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभागों में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतरराज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता की और इस संवाद सत्र में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं ने भाग लिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इन आपदाओं के दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है और जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में अन्य राज्यों को भी इनका सामना करना पड़ सकता है। तो राज्य का लगभग 90% भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी है और यहाँ सड़क संपर्क सुविधा लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभाग को अब सुरंग निर्माण और बहुमंजिला भवनों जैसी उन्नत और दक्ष अधोसंरचना के विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। नई तकनीकों और कार्य प्रणालियों को अपनाने में शुरुआत में तो चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए इन प्रणालियों को अपनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं का पुनर्निर्माण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। वर्तमान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% आपदा पुनर्निर्माण पर खर्च किया जा रहा है और वर्ष 2050 तक ये व्यय बढ़कर के 14% तक पहुंच सकता है और इस स्थिति में आधुनिक तकनीकें अपनाने और विभाग की क्षमताओं का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग को अपने पारंपरिक कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर उभरते क्षेत्रों में भी अवसर तलाशने चाहिए और विभाग बांध निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तार देने पर विचार करेगी।

0: चलिए श्रोताओं, अब इस जानकारी के साथ आगे को बढ़ते हुए और एक खूबसूरत गीत सुन लेते हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट और बेल आइकन को प्रेस करें।

जी श्रोताओं, इन हसीन वादियों से दो चार नज़ारे चुरा लें तो चलें। ये गीत सुना आपने 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। जब हमें भी इस तरह के नज़ारे दिखते हैं तो हमारा भी मन करता है ना कि बस इनको चुरा लें और चल पड़ें, और या फिर इन्हें हम यूं ही जी भर के देखते रहें और कहीं ना जाएं, बस यहीं बैठे रहें।

तो बस इसी तरह से कई बार मन की बड़ी अजीब अजीब सी स्थितियाँ होती हैं ना। कई बार मन को कुछ अच्छा लगता है, कई बार कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मन की बातों में ज़्यादा आना नहीं चाहिए। और जो काम हमें मिले हुए हैं, सौंपे गए हैं, वो तो हमें करने ही हैं। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो हम खुद ब खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। हम कई बार ना किसी भी कारण से हम किसी को मना नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है ना कि जो भी हमें ये कहता है, हाँ ये काम कर दोगे, हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हाँ हाँ जी हम कर देंगे। या फिर हम चाहे बेशक कितने भी थके हुए हों, पर अगर हमें लगता है कि हमें वो काम आता है और सामने वाला जो नहीं कर पा रहा है, तो हम चलो उसकी मदद ही क्यों ना कर दें, चाहे अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे या किसी भी कॉस्ट पे। लेकिन एक बार फिर से, वैसे मैं कहती रहती हूँ यहाँ से, लेकिन आज भी कहना चाहूँगी कि ना कहना भी ज़रूरी होता है। ना कहेंगे ना जब हम, तो ही सामने वाले को एहसास होगा, या फिर एहसास नहीं भी होगा तो कम से कम वो कोशिश करेगा खुद ब खुद कुछ ना कुछ करने की। और इस तरह से आप सामने वाले का बुरा नहीं कर रहे होते। हमें लगता है ना कि अरे भाई हमने इसको मना कर दिया, अब ये इसका क्या होगा, ये कैसे करेगा, ऐसा नहीं होता है। हम उसके डेवलपमेंट में उसकी मदद कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो खुद ब खुद भी तो कुछ ना कुछ करे। और ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये होता है घर में माँ का। माँ बच्चों के लिए सब कुछ करती है, कभी भी कोई ना बच्चों को नहीं की जाती कि ठीक है ये खाना है, हाँ जी ये बना देते हैं, वो खाना है वो बना देते, मतलब इतनी डिमांड्स पूरी करने के करनी भी चाहिए, उनका हक भी है। और लेकिन कई बार ना हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चों को तो छोड़ो और भी सब लोगों की डिमांड्स पूरी करते करते खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो अपनी वैल्यू भी ज़रूरी है, अपनी वैल्यू भी समझें, फिर देखें कि अगर आप एक बार ना कर देते हैं ना, तो क्या सामने वाले का बर्ताव जो है वो आपके साथ वैसा ही रहता है हमेशा जैसा पहले रहता है, या फिर थोड़ा सा चेंज होता है, बदलता है? तो आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ में आएंगी ही, और आपको भी पता चलेगा कि वाकई में वो सच में प्यार है या आप सिर्फ एक मशीन है डिमांड्स पूरी करने के लिए। अब इसमें मैं ये पर्टिकुलर नहीं कहूँगी कि ये लेडी ही हो सकती है, घर में कोई भी हो सकता है, जो भी जिम्मेवारियाँ पूरी करता है ना वो शख्स, अगर एक बार ना कह दे तो फिर क्या होगा। चलिए, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब तो हम नहीं कहते कि आप जानबूझ करके उसका काम ना करें, मना कर दें, लेकिन अगर आप वाकई में खुद को खुश रखना चाहते हैं और कभी थके हुए होते हैं, तो एक बार ना कह कर के भी देखिए, फिर देखिएगा कि कैसा माहौल होता है, फिर एक्चुअली में सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते हम छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चों का तो क्या है, वो तो अभी बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि असली इमोशंस क्या होते हैं या नकली इमोशंस क्या होते हैं, उनके इमोशंस सच्चे ही होते हैं।

खबर है हमारे सामने। आपको बता देना चाहती हूँ कि धर्मशाला में पार्षदों का जो शपथ ग्रहण समारोह ग्रहण है अब वो 29 तारीख को होगा, और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रुष्ट भी हैं लोग। ऐसा भी माना जा रहा है कई लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि पुतले भी फूंके गए हैं। तो ये जो खबर है इसकी विस्तृत जानकारी हम देंगे आपको गीत के बाद। शागिर्द फिल्म का ये गीत है। आवाज लता मंगेशकर की।

जी हाँ, कई बार ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमारे मन में जो भी इमोशंस उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं वो कैसे हैं। वो दोस्ती का है या फिर प्यार का है, गुस्से का है या अवसाद का है। हम बड़े उसमें ना पशुपेश में पड़े रहते हैं।

और वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारे साथ कि हमें सच में समझ नहीं आता है कि आखिरकार हमारे मन में चल क्या रहा है। बस हमें बस इतना ही समझ में आता है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड है और किसी न किसी रूप में हम उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा गौर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इमोशंस खुल करके हम उसको डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते हैं कि आखिरकार वो है क्या। आपके साथ भी हुआ कभी ऐसा? चलिए इन इमोशंस पर भी बात करेंगे हम कार्यक्रम में आगे। अभी फिलहाल हम चलेंगे हिंदी समाचारों की ओर जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आपने सुने हिंदी समाचार और हम वापस आ गए हैं, करने आपसे सभी से बातचीत 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज जिन जिन महान हस्तियों के जन्मदिन हैं उनके बारे में बता देती हूं। लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म हुआ था 1869 में, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और किर्लोस्कर समूह के संस्थापक जन्मे थे आज ही के दिन, मतलब तारीख में। विक्रम सेठ, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और कवि का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1952 में। और भारतीय फिल्म अभिनेत्री, मॉडल और मार्शल आर्टिस्ट का जन्म हुआ था नीतू चंद्रा का 1984 में। और साथ ही हमारी, बस ये बात मुझे आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी, आज हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी जन्मदिवस है। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि 2022 से भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था और किसी आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति और प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। जून 1958 में वो जन्मी थी ऊपर बेड़ा नाम की जगह में। शिक्षा उनकी हुई रमा देवी महिला विश्वविद्यालय में।

उनके परिवार ने उनका नाम उनकी दादी के नाम पर दुर्गी टुडू रखा था और उनका नाम उपनाम बत्ती था, जो बाद में पुती बन गया। उनके स्कूल शिक्षक ने उनका नाम बदलकर द्रौपदी रख दिया और अतीत में उनका नाम कई बार दुपर्दी और दौरपदी सहित कई अन्य नामों से भी बदला गया था।

0: 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला था। 2009 में बीजेडी और भाजपा गठबंधन के समाप्त होने के कारण वो मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार गई थी और 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनी गई और 2015 तक वहाँ जिलाध्यक्ष भी रही। चलिए एक गीत सुन लेते हैं हम पहले और फिर करेंगे उनके बारे में और भी बात, और आपको ये भी बता दें कि आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी है।
1: कार का सफर तन्हा शुरू होता है। आपकी सद्भावना और आशीर्वाद

जी श्रोताओं, आपने सुना ये गीत। आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। ऐसे भी कई क्षण होते हैं जब हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। जैसे वो गीत है ना कि आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, बस ऐसा हाल कभी कभी होता है हमारे दिल का भी। लेकिन जब भी ऐसी कोई परिस्थितियां आए, ऐसी कोई सिचुएशंस आए, तो कहते हैं ना कि सुख और दुख दोनों को हमें संभाव से लेना चाहिए। तो हमें ना तो खुशी में ज़्यादा उछलना चाहिए, सेलिब्रेट कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपका हक बनता है अगर आपने मेहनत की है और वो सफल हुई है, और जिस भी क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी को गीत संगीत में ज़्यादा मज़ा आता है और उसका सपना होता है कि वो उसी तरफ जाएगा, कोई फोटोग्राफी करना पसंद करता है, किसी को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ लिख करके कोई मुकाम हासिल कर लूँ, कुछ अचीव कर लूँ, और अगर उसे वो अचीव हो जाता है, मतलब हर किसी व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी मंजिलें अलग हैं, मतलब जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है उसका सफलता का के जो मायने हैं उसके जीवन में अलग अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति चाहता है वही दूसरा व्यक्ति कभी नहीं चाह सकता। खैर, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ बने हुए हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आगे आने वाले दिनों में क्या क्या है वो बता देती हूँ आपको पंचांग के अनुसार। 21 जून कल सबसे बड़ा दिन है, और यही दिन चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। रविवार है, जेठा रविवार, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी है। 22 जून को है सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष और अष्टमी है। 23 जून को नवमी है, महेश नवमी भी कहते हैं उसे, और 24 जून को बुधवार, ज्येष्ठ है, शुक्ल पक्ष दशमी है, और 25 जून को है गुरुवार, ज्येष्ठ गुरुवार, शुक्ल पक्ष एकादशी की निर्जला एकादशी 25 जून को आएगी। और वैसे तो गर्मियों के महीने में, जून के महीने में, जैसे भी गर्मियां स्टार्ट होती हैं, जगह जगह पर छबीलें लगती ही हैं। छबील जानते हैं ना आप, जहां पर वो मीठा पानी पिलाया जाता है उसे छबील कहते हैं हमारे यहाँ की भी लोकल लैंग्वेज में। तो वैसे वो पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन हाँ, निर्जला एकादशी के दिन तो हर जगह ही छबील लगाई जाती है। तो 26 जून को है द्वादशी और 27 जून को त्रयोदशी है, शनि का प्रदोष व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी थी। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर होगा वो भी सुन लीजिए। हमीरपुर में योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह हो रहा है, और इस अवसर पर प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वैसे योग ना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो ही जाना चाहिए। योग का मतलब होता है जोड़ना, और आसन तो आपको पता ही है, आसन होते हैं, लेकिन योग वैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, मैंने कहा हो जाना चाहिए, वो बात तो सही है, वो उस तरह से हो जाना चाहिए, लेकिन हिस्सा है भी, क्योंकि इस जमा घटाव के बिना ज़िंदगी संभव है ही नहीं। अब योग को आप किसी भी मायने में ले सकते हैं, किसी के साथ लगन लगाना आपका योग हो सकता है, या फिर ये जो आप योगा करते हैं इसे आप योग कह सकते हैं, जैसे आप लेना चाहें, परंतु अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ना, तो ये जो कल का दिवस
आ रहा है। इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो हाँ, इसको भी हमें अपनाना ज़रूर चाहिए। चाहे हम थोड़े से ही व्यायाम करें या प्राणायाम करें, प्राणायाम से ही शुरू किया जाता है। सांसों पर नियंत्रण होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपको पता है हमें यहाँ पर माइक पर, ये जो मेरा प्यारा सा दोस्त दिख रहा है आपको माइक, जी हाँ, अब तो मैं यही कहूँगी कि दिख भी रहा है आपको, पहले तो आप सिर्फ सुन ही पाते थे। और ये बार बार हमें बात अभी आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमें लाइव देख पाते हैं अब रेडियो गुंजन धर्मशाला के पेज से और या फिर 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के पेज से। जी हाँ, दो पेज हैं हमारे और एक का तो ग्रीन लोगो है, एक का कलरफुल लोगो है, तो उन दोनों पेजेस पर जाकर के आप हमें देख सकते हैं और रेडियो सेट से सुनते तो आप हमें रहते ही हैं। खैर, शुक्रिया आप सभी का हमें सुनने के लिए और इतनी तल्लीनता से सुनने के लिए कि हमें बाहर पता लगता है आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं वो भी हम तक पहुंचती हैं और जो आप चाहते हैं कि यहाँ से इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं तो वो भी हम तक पहुँच ही जाते हैं किसी न किसी तरह से। परंतु अब तो एक सीधा सा माध्यम है ना आप लोगों के लिए, एक तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7018117091, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। और हमने ये जो नई मुहिम शुरू की है फेसबुक पेज लाइव की, वो कैसी लग रही है आप सभी को वो भी बता सकते हैं आप हमें। और यहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप हमें देखते हैं तो। चलिए, एक और बड़ा चुलबुला सा गीत अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हम।

कैसा लगा आपको ये गीत? ये गीत पिकनिक फिल्म से था, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंचन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, बता दूं आपको कि हिमाचल के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून तक जारी रहेगा ये रिमझिम का दौर। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 10 जिलों में लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके बाकी जिलों में 2 दिन तक हल्की से भारी बारिश सहित आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मई जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 23 और 24 जून को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि इन दिनों में कोई औपचारिक अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है। 25 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। अब कोई आना चाह ही रहा है तो हम उसे रोक कैसे कर सकते हैं ना, तो वेलकम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उस वेलकम करने के साथ साथ, जैसे कि मैंने कार्यक्रम में पहले कहा आप सभी को कि सावधानियां बरत लें तो और भी अच्छा है। शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने से मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ गई है और बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश का रिकॉर्ड भी किया गया है। और अब असली परीक्षा शुरू हो जाएगी कुछ डिपार्टमेंट्स की, कि भाई अब ये जो शुरुआती बारिश आ रही है, प्री मानसून आ रहे हैं, उनमें ही जो पोले हैं ना वो खुलनी शुरू हो जाती हैं जगह जगह पर, कि कहाँ पर क्या काम थे जो जल्दी मतलब समय रहते कर लेने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हुए हैं। और प्री मानसून से पता लग जाता है कई जगह कि आगे आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। इसके साथ ये भी बता दूं आपको कि पंजाब हरियाणा से पकड़े चिट्टे के सप्लायर। शिमला पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। 40 अंतर्राज्यीय नेटवर्क्स का पर्दा फाश हुआ है। नशे के काले कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 2 मामलों में 3 युवकों से कुल 10 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये जो बात है, ये जो खबर आ रही है, ये आ रही है बिलासपुर से।

जितना मर्जी इस चीज़ को पकड़ा जाए, रोका जाए, भाई लोग रुक ही नहीं रहे हैं। अब तो और एक चीज़ निकल करके सामने आ गई है कि कोई ज़ॉम्बी ड्रग करके एक पता नहीं क्या लेते हैं लोग, कि जिस पोजीशन में होते हैं ना उसी पोजीशन में घंटों घंटों वो खड़े रहते हैं। अगर कमर झुकी हुई है तो वो झुकी हुई ही वो खड़े ही रहेंगे, अगर कोई बैठा है तो वो बैठा ही रहेगा। वो ना बेहोश होता है बिल्कुल, उसको कोई होश नहीं होती है, लेकिन ना तो वो इधर झुकता है ना उधर झुकता है, वो एक पोजीशन में बैठा है तो बस बैठा ही। उसे हिलाएंगे भी आप तो वो बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं भाई, इस तरह की ये जो नशे पत्ते की आदत है उन व्यक्तियों को तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और इस तरह के जो ड्रग्स हैं या दवाई कहूँ मैं, तो वो ज़्यादा आकर्षित करेगी और ज़्यादा उन लोगों को पकड़ा जाएगा कि अगर ये करते हैं, पहले से हैबिचुअल हैं तो इन्हें ही दे दिया जाए ज़्यादा बेटर है। तो वो तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। न जाने क्या सा केमिकल होता है जो आपके बॉडी में कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करने देता है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा नहीं बहुत अलर्ट हो जाइए कि इस तरह की चीज़ें अब हमारे आसपास भी आ चुकी हैं। नशा तो आ ही चुका है, वो तो जब आया था तभी हमें सोचने पर मजबूर हो गए थे हम कि ये क्या हुआ, लेकिन अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक ड्रग्स जो हैं वो आ रही हैं। अब कार्यक्रम में समय हो गया है 7:30, एक छोटे से अंतराल का समय है, रुकते हैं हम और फिर आपको सुनवाएंगे खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आज 20 जून के दिन मुंबई का ऐतिहासिक विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, आज ही के दिन आम जनता के लिए खोला गया था। और पुणे में भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर के किले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था 1858 में, जिसे कि आधिकारिक तौर पर सन 1857 के सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अंत माना जाता है। और आज है विश्व शरणार्थी दिवस, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वैश्विक स्तर के साथ साथ भारत में भी 20 जून को शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत सरकार का आज ही के दिन को PM किसान उत्सव दिवस के रूप में भी मनाती है भारत सरकार, जिसके तहत प्रधानमंत्री देश के करोड़ों किसानों के खातों में सम्मान निधि की किश्त जारी करते हैं। और हर साल 20 जून को आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंग दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में बंगाल प्रांतीय विधानसभा ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया था, जिसे कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना।

उस्तादों की उस्ताद फिल्म का ये गाना है, गीत है, आइए सुनते हैं हम।

पहला भ्रम ये है कि योग एक संपूर्ण व्यायाम नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है, इसे धीरे धीरे करते हैं तो ये योग और तेज गति से कर रहे हैं और तो ये किसी भी फुल बॉडी एक्सरसाइज की तरह लाभ देता है।

0: हमसे जी करते हो क्यों।
1: दूसरा भ्रम है कि योग सिर्फ लचीले शरीर वाले ही कर सकते हैं। योग से तंत्रिका तंत्र पर दबाव पड़ता है, हर अंग में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बढ़ने से लचीलापन आता है। इसकी शुरुआत के 3 से 4 दिन तक बॉडी योग के लिए तैयार हो जाती है और इसे अधिक वजन वाले लोग भी कर सकते हैं। और योग करने के लिए अपने कोई लाइफस्टाइल में खान पान में बदलाव करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप कर लेंगे तो योग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।

0: क्या करूं?
1: तो तलब होना और मसालेदार खान पान के कारण ज्यादातर लोगों को गैस की समस्या रहती है। तो ऐसे में कठिन आसन करने पर दिमाग में गैस चढ़ने से चक्कर आने की शिकायत होती है और समय पर भोजन लें, देर तक जागने और जंक फूड खाने से बचें। योग के कोई दुष्परिणाम नहीं होते, लेकिन दर्द और चोट के मामले में विशेषज्ञ से बात करके ही आसन करें। वो आपकी शारीरिक समस्या के अनुसार उचित योग बताएंगे आपको करना, कि किस तरह से करना है और कितनी अवधि में आप करें उसकी जानकारी देंगे।

लोग अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए जिम का सहारा लेते हैं, लेकिन योग द्वारा भी हम सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। तो ये कुछ मिथ्स थे योग से जुड़े हुए, तो हमने शायद हो सकता है कि कुछ दूर करने में हम सक्षम हो सके हों। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, जो कि आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि की हस्तांतरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। नीट यूजी पुनः परीक्षा कल। देश भर के 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी लेंगे भाग। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने डीबीटी के तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।
1: मेरा ये मानना कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो भी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए। सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही है, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें।
0: इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर, मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। इसमें 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नीट परीक्षा का बार बार लीक होना देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसकी गहन व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट देने वाले छात्रों के लिए एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है।
1: नीट का पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चे हमारे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मैं पेपर देने के बाद एक एग्जामिनेशन पास करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही लीक हो रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकारें थी कभी भी इस प्रकार के कोई पेपर लीक नहीं हुए। ये कहीं ना कोई बड़ी गलती है। हमने नीट के हिमाचल के बच्चे है, हमने ये कहा कि बार बार किराया क्यों खर्च करें, हिमाचल के बच्चों को आने जाने का पूरा फ्री में उनको सुविधा उपलब्ध करवाएं।
0: इस परीक्षा के लिए कांगड़ा जिला में स्थापित 12 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार आईटीबीपी की सेवाएं भी ली जाएंगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
2: कल नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है की पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर लिया और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर, एग्जाम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहाँ पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी तकलीफ से ना आए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आने वाली राज्य सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि कर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं पर ईंधन व बिजली खरीद समायोजन अधिभार के रूप में प्रति यूनिट 33 पैसे बढ़ाकर हर उपभोक्ता पर औसतन लगभग 125 रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रदेश में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। यह विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और इसमें हजारों लोग योगासन करेंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
3: अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई देता है। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को कर्ज और निजीकरण की राह पर धकेला है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने नियमित खर्चों के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार संस्थानों को मजबूत करने के बजाय निजी हाथों में देने की योजना बना रही है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर RDG बंद करवाकर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने कहा कि केंद्र ने केंद्रीय योजनाओं को दिए जाने वाले फंड में भी कटौती की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितैषी है और OPS देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि की हस्तांतरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। नीट UG पुनः परीक्षा कल। देश भर के 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी लेंगे भाग। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं।
4: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और अब कार्यक्रम में थोड़ा सा समय बचा है, ज्योति पठानिया को भी दे दीजिए इसी गीत के साथ अब अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जल्द मिलूंगी किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला, इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो तो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है?

0: हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: किसका इंतजार कर रहे हो मित्र? तुम सोचते हो कोई आएगा और तुम्हारी समस्याएं दूर कर देगा और कोई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा? याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता, अवसर कभी नहीं ठहरते। और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता वो केवल पछतावा में रह जाता है। तुम्हारे जीवन को बदलने वाला कोई और नहीं, तुम स्वयं हो।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: सुनो, उस दिन तुम मेरे साथ बहस कर रही थी ना कि आदमी ज्यादा समझदार होते हैं या औरतें। ये देखो, एक औरत ने दूसरी औरत को बोला कि अगर तुमने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो ये बैग की सारी चॉकलेट्स तुम्हारी। और दूसरी औरत ने एक घंटा सोचने के बाद पता क्या बोला? इसमें पक्का आइसक्रीम होगी।
4: Oh, no. पागल, बैग में आइसक्रीम कौन रखता है?
3: वही तो।
4: वैसे बैग में था क्या? बताओ ना, बैग में था क्या? मुझे तो बता ही सकते हो।